0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले जीऊ
1: के तपाईलाई कुनै पनि रगत परीक्षणको लागि पोखरा काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यता छ
2: के तपाई गुणस्तरीय प्रयोगशालाको खोजीमा हुनुहुन्छ
1: यदि त्यसो हो भने अब चिन्ता नलिनुहोस्
2: किनभने बे अस्पताल काठमाडौँमा पूर्व कार्यरत मेडिकल टेक्नोलोजिस्टद्वारा सुन्दर नगरी कुस्माको बडगाउँमा खोलियो
1: सिटी डायग्नोस्टिक सेन्टर सिडिसी
2: हाम्रा सेवाहरू
1: होल बोडी चेकअप
2: थाइराइड परीक्षण भिटामिन डी चेक जाँच
1: मधुमेहको सम्पूर्ण चेक जाँच A1C जाँच लिपिड प्रोफाइल लिभर फंक्शन टेस्ट एलएफटी
2: युरिक एसिड बाथ टाइफाइड परीक्षण
1: गैस्ट्रिक को परीक्षण
2: मोटोपन को परीक्षण
1: गर्भ परीक्षण निसंतान परीक्षण एवं पाठ्यघर को कैंसर को परीक्षण
2: रगत भ्रिया एवं दिशा पिशाब परीक्षण
1: पुनश्च यहाँ हरेक दिन अत्याधुनिक प्रविधि को मेसिन द्वारा धौलागिरीमै पहिलो पटक थाइराइड तथा भिटामिन डी को चेक जाँच मात्र एक घंटा में गरिन्छ
2: सम्पर्क स्थान
1: सिटी डायग्नोस्टिक सेन्टर बडगाउँ कुस्मा पर्वत बागलुङ मेडिकल हल रहेको नयाँ भवन सँगै
2: सम्पर्क फोन नम्बर 0674202727 0674202727 मोबाइल नम्बर 98511 89918
1: सिटी डायग्नोस्टिक सेन्टर बडगाउँ कुस्मा पर्वत
3: रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ट्ज

0: 들었잖아. 딱해서 보너스 빵.
1: 비슷하게 널
0: भरपूर मनोरंजन सहित मात्र रू 9 से 19 मई डिश होम को फीफा वर्ल्ड कप

0: सामाजिक सञ्जाल जी छ्यानले जाँझीमरी बुझीमरी ब्याङ्गैन आधिकारिक प्रोफाइल मात्र फलोलामा खैबै बिनी लिङ्क खुल्दिउ भन्दा उइसु सुखन क्या खलो सुजी पिमिलो खनयामो बिमारी छ्यानले खोना दे खुल्दिब वेबसाइटैना URL चेक लाना आक्षेप घटना तल आपिबै लागि समय समयरी आफैना पासपोर्ट फेरदिल परिमो नुए तोय तारी संखलैदी विषा बैंगरी यैमरी तुरन्त खबर लाना
1: सतर्क तन ठगे तबद क्या जोगिना
2: सिद्धार्थ बैंगर क्याले जनहितरी जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँभरिलाई।

0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले मध्याह्नको ठीक 12 बज्यो।

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो
1: जसको नाम नै पर्याप्त छ
2: दिदी बहिनी
1: दिदी बहिनी
2: दिदी बहिनी
1: रेडियो दिदी बहिनी हामी गर्न सक्छौ
2: गर्न सक्छौ

0: यो रेडियो दिदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले अपराह्न को ठीक 3 बज्यो।

0: निमोनिया, टीबी, मलेरिया, निसन्तान तथा बाजुपनको परीक्षण, रगत, पिसाब एवं वृक्क परीक्षण,
1: 24 घण्टा आकस्मिक सेवा।
2: सम्पर्क बागलुङ मेडिकल हल तथा सिटी फार्मेसी,
0: बडगाउँ चौर कुस्मा पर्वत। फोन नम्बर 0674202727, 0674202727।
1: मोबाइल नम्बर 98572597, 98572597,
0: 98581918।
1: स्थान बागलुङ मेडिकल हल स्वास्थ्य सेवा क्लिनिक,
0: बडगाउँ चौर कुस्मा, नयाँ भवन पहिलाको स्थान भन्दा 100 मिटर अगाडि।